ऐसे महान दर्शी दर्शन देखत ही शुद्ध की न शुद्ध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में नाम रहे वो ही देख मैं तो अपना आप ही भूल गई हूं दर्शन सपने यू भी भई गहो की नायन चला उत्तम सखी मतम कहने मैनु सपने चराती साई मिले तो मतम सखी कहती फिर गहो की नायन चला उसका अंचल क्यों ना पकड़ ले सपने यू भी भई गहो की ना अंचला उसका दामन क्यों ना पकड़ और वो जान क्यों दिता तो उत्तम सखी रो के कहती है की तरह सुंदर पुरख विराजत वो इतना सुंदर सी इतने जलाल वाला सी सुंदर पुरख विराजित पेख मन पंच मैं अपने आप को सुधी जिस

जब इश्क निवास चली थी, इश्क दिल प्यार जब इश्क निवास चली थी या की मंदिर ते की बसी थी। फिर चीजें जी कोई कमी से हकीकत तो प्यार है, प्यार नहीं तो मंदिर ची घटी उजाड़ता।

इश्क निमाज च नीती क्या मंदिर ते क्या मसीती फिर जद यार ने आन दीदार दिता यार को वाहन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने उस अकाल पुरख नु अपना यार के सुन यार हमारे सच यार कहते प्यारी तेरे नाल बहुत प्यार कि पुराना आदमी हो मेरा यार सब तो श्रोमणी प्यार करने वाले धन गुरु अर्जुन देव पातशाह

हंस उड़ा रही है महाराज की सत्संग रूपी मानसरोवर की। आप जी धन गुरु अमरदास पातशाह जी की बख्शिश पर आज पूर्णवासी की रात बख्शिश वाली रात गंगाराम से कितनी रहम। सोचांगे गंगाराम ने भूल की थी और गंगाराम ने तो एक बार की थी असी रोज कर जाते दूजे पास माया जितनी लग जाए गुरु वाल संकोच कर नहीं। माया तो वही साड़ी है जिड़ी चंगे पासे गुरु वाली। साईं तुलसीदास जी ने लिखा माया है दो भाद की दो चलावे रहा एक ले जावे नरक को एक सब शराबा को बाबा च माया ला दो नरका का बूहा खुल जाए गुरु दे लेखे ला दो गुरु नरक मिल जाओ। तुसी जिथे तन मन नाल आके जुड़े अपने तनों में पवित्र दर्शन ते शब्द दीते शब्द गुरु का रूप है। बाबा जी बचन करते सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कह लगे ना लेके अरदास तू किसी नू की दे सकता है ये तो शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरदा है मानो शब्द वाला ही सिख दे हिरदे ते बह के आप प्रेरदा है आप शब्द का आदर कराउंदा है। ते बाबा जी कह लगे फिर बख्शिश गुरु आप ही है तो आप जी समा एक दिन भी दो दिन भी कुछ दिन तू आप नित रहे हो सार अमृत वेले भी आके जुड़ते हो शब्द आओ जिस प्रोग्राम नू कदे बना रहे सन बरफरदार सरदार गुरचरण सिंह जी दीवा हरबंस सरदार करनैल सिंह जी सरदार हकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे दे प्रबंधक आई साहब कदों आ रहे हो प्रोग्राम बनिया वीख दाए प्रोग्राम सार दास पहुंच गए मार्ग दे दर ते हाजरियां भर रहे हैं हम बाकी दो ही दिन विच रहेंगे कल ते परसों सेवका ने अगले प्रोग्राम से चला जाना फिर नदी नाव से इतने साल 50 साल हो गए कीर्तन कर रहे हैं पहली बारी इस टाउन के दर्शन हुए गुरु खां के दर्शन आगे पीछे पड़े अरे संस्थान आओ जो अगला प्रोग्राम है आप जी का निकनेम है अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है वो प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो ताजो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसे तरह जुड़ के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सको और गुरु अमरदास पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश कर आप जी दे दरों करो और साए हो सिख माई पाई पातशाह आप जी की दिती हुई दात सफल करते हुए शब्द गुरु का सत्कार करते कीर्तन पौन अरदास कराते हैं आप अपने गुरसिखा दमाइया च बरकत पाओ आप अपने गुरसिखा सिखी जीवन बच्चे बच्चिया चढ़दिया कला

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

तेरे काज न बिखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

संग उजियारा जहां पंत तेरा को न सिजानू हर का नाम ते नाल पछानू जय महाभयान तपत बोघा तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम।

अगला पीड़ा आएगा निरंकार मेर करेगा ओदी रजा विची जो कुछ मालिक देवेगा ओ सबर ते संतोख नाल छकांगे। महाराज झूठी गल मेरा तो तुरना ही मुहाल है। सिद्धी गल कीर्तन हो गया और प्रशादा चाहिए डाडी भुख लगी। हजूर कहने लगे मरदाने काबर ना नंका रोटी देवेगा मारे कर देवेगा आखो श्री भाई कई दिन हो गए रोटी का मुंह ही नहीं देखिया तकी नहीं रोटी क्यों एवं कीर्तन हो। हजूर कह लगे मरदाने कोई नहीं उदास ना हो रोटी रब देवेगा पर अजे सबर कर मारे मेरे तो सबर नहीं जो हुंदा ए पिया जी रबाब जां तां रोटी दो नहीं तां मैनू आ गया दो आखो श्री भाई। मेरे धन गुरु नानक फते पातशाह जी मरदानी नु फिर प्यार नाल कहिंदे फिर सत्कार नाल कहिंदे हन मरदानिया तू चढ़दियां कलां च रहो महाराज बड़ा चिर चढ़दियां कलां च रहा हुण नहीं रहा जांदा रोटी च। हजूर कहण लगे मरदाने इत्थे तां प्रबंध नहीं हो सकदा। मरदानी ने कहा महाराज ये प्रबंध नहीं हो सकदा ए पिया जे रवाज ते मैनू छुट्टी। मरदानी देख ले तेरी मर्जी कथे आया सा करो कथे ही जाते महाराज जाते तो सही आप तुम छकते छकते पता नहीं तुम तो भुख लगती नहीं है पर मैनू तो डाढ़ी लगी हुई है। आखिरकार प्यारी सात संगत अज मरदाने ने भुख दे दुख वजो कई तरह के जवाब सवाल भी हजूर नार किए आखिरकार जवाब दे के तुर पिया खुश दी गई बाबा तू तो निरंकारी सच्चा साथी वेख के तेरे नाल तुरया था पर रोटी ना मिले तो कर...

चाली चलिए। सिख ने कड़ी चाली चलनी है जेदे नाल गुरु प्रसन्न हो, चाली चली जेदे नाल गुरु की प्रसन्नता मिलनी ओ चाली चली, दूजी नहीं चली। सिख कदे भी वो चाली नहीं चलता जेदे नाल कलगियां वाला खुश ना हो। गुरु नूं खुश करिए प्यारी साध संगत, जे दुनिया नूं खुश करना चाहते हैं तो गुरु नूं खुश करिए। गुरु किस ते खुश होंदा है? जिहड़ा गुरु दी चाली चल के गुरु दे हुक्म च रहिंदा। जो भी गुरु का हुक्म, अमृत छकना, सोने दाड़े केस रखना, गुरबाणी नाल जुड़ना, सच धर्म की किरत करनी, सच बोलना, यह है गुरु की चाली। तो जिहड़ा सिख है वह गुरु की चाली चलेगा। फिर गुरु की चाली केड़ी? हजूर फरमा

0: माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तेनू अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया आखन लगा, रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ये पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ये हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा, हुण विखा अपना बगीचा। ते राही दा हथ फड़ के माली कहंदा है, एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे आ फुल लगे सन। एक एक फुल दा ना लै लै के, बूटे दा ना लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा है हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नूं पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटा। ऐ मनुख तू भी कदी छाती।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

श्रवण सोए सुन निंद बीजा, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे साब

संसार दे अंदर बोलना है पर गुरु की मत द्वारा। हजूर गरीब नवाज साहब सचे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमान कीता है।

0: पटपट बेड़ी पाइए पटपट गड़िए काश प्रिय जित बस बस प्रिय जित मास प्रिय जित आज प्रिय जित सास निकले कैलो मैं चकना चाक महला पहला
1: चिपड़िया तकड़िया मोती भव्या तुन वह बहु पे किया दुख दिया सौ वे जी आया अपना किया हन ना खाया साधु आया बुंद खाया दूजा भाया बस ना मेरे निस्कारे बोल भी गुता को जाके को भी सुता पाकु पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई से छाई पाई मूर्ख ते पत गवाई बिन नामे निष्ठाए ना पाई रह बे बाणी बड़ी मसानी अत ना जाने फिर पछताने सतगुरु

थारा केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती कि नहीं कया मैं कुले वडाई कि नहीं कया बां बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा कि नहीं भवन

पुराणतन राग रे ऐदावादी ऋषभ ते संवादी पंचम ने ओडव जाति का राग भाव एर अंदर पंच सुरां लगदियां ने।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हस्यो लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तों अनादि काल तों सारे मंगदे आए ने ते ओ दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटान वाला, इसम फाइल। ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते पेद। जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह। बाबा नंद लाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी ही राज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनु मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करन वाले ने उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उना दी ता गल की करनी। उना वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोक तराज कर रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है जिन्हां विच लचक ना होवे। लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है, जड़ा गजा दे जांदियां ने हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है। पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है, इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है, मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनू मुर्दा समझो, क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं, मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है, जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने, उहनां नू भी तू अपने गैबी खजाने विचों वड मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है, जो तेतो मुनकर ने तेरियां दातां भी ले जांदे ने, तेरियां बख्शियां भी मानी जांदे ने। हे मुने परमेश्वर तेरियां नेमतां भी मानी जांदे ने, ते तो मुनकर भी ने पर फिर भी तो उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे शब्द अंदर फरमांदे ने के मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है, मैं हुण निश्चा कर लिया है के दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगे ही देना है। मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा, मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है। गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है के परमेश्वर ही वड्डा दाता है, ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुखदंत रसन कस जाए, इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी, हाजत नहीं रह जांदी। ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है। ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां किथों मंगा हो, कौन है इस ते मुकाबले दा दाता? साचा साहिब है ते वड्डा दाता है, उसदे भंडारे अखुट ने। वाह वाह।
मुहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए। कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए बड़े बड़े इत

गुरु की शिक्षा की कहती है मन की ज्योत स्वरूप है, तू वाहिगुरु जी भी अंश है, तू वाहिगुरु जी की ज्योत का ही स्वरूप है, उसको अलग नहीं है, तू परमात्मा का ही अक्ष है, तू परमात्मा का ही रूप है, पर तू परम दे विच पिया होया है, इस परम नू दूर करके अपनी असलियत नू लभण की कोशिश करके तू कौन है। ऐ गुरु दी मत है, ऐ गुरु दी मत है कि तेनू ये पता नहीं कि तू कौन है, तू है वाहिगुरु का रूप, वाहिगुरु दी अंश, अते वाहिगुरु दी तमाम खूबियां शक्तियां वो तेरे अंदर हैं, वाहिगुरु जी की तमाम अकल इंटेलिजेंस वो तेरे अपने अंदर है, वाहिगुरु के तमाम गुण तेरे अपने अंदर हैं, पर तू अपने आप में कुछ होर समझी बैठा है, जो समझी बैठा है कि वो नहीं है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना कहने मूल पहचान, अपनी ओरिजिनैलिटी नु पहचान, अपनी रूप नु पहचान, कि तू किसका है, कितों आया है, किस दे नाल तू संबंध रखना है, कहते अपने जीवन दे विच ओ लभण की कोशिश कर, अगर तू ओ नहीं लभिया, आहुन पंक्ति ध्यान नाल सुने, मूल ना बूझे अपना जे पशुआ के तोर दिए, कहते जिन्होंने अपना मूल नहीं लभिया, अपनी ओरिजिनैलिटी नहीं लभी, कि उन्हों का आगाज कितों होया, कहते हैं वो पशु हैं अते तोर गवार हैं, मूल ना बूझे अपना से पशुआ से तोर दिए, ऐ है गुरु दी मत। तो पहली जी मैं दस चुका हाँ, हम किसी आप ही फर्क देख लो कि गुरु दी मत जे विच की है और बाहरली संसारी मत जे विच की है। ये जी मत है कि अपने आप नू पछानना है, आप पछाणो तां कह जाणो। गुरु तेग बहादुर जी ने भी आख्या है ना, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा लेपा तो ही संसमाई, बहुत मध जो बात बस है मुकुल माहे जैसे खाई, कैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई, बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन, अपने आप नू चीनन तो बिना, अपने आप नू पछानन तो बिना, अपने आप नू लभन तो बिना मिटे ना परम की काई। ये परम की त्रेव जी है मिटनी है, किसी परम की ही रहना पाव हो कुछ होर, अते समझी अपने आप नू कुछ होर जानते हो, उस तो वड्डी त्रैजडी की हो सकती है, इस तो वड्डी त्रैजडी अते इस तो वड्डी ना समझी, इस तो वड्डी बेअकली की हो सकती है कि मैं होवां कुछ होर अते अपने आप नू समझी कुछ होर जाना, इसमें भी मत बड़ा आख्या जा सकता है। गुरु जी महाराज कहते हैं पहला ये तो फाइंड कर लो कि तुम हो कौन, उस तो बाद फिर तुम मत वाले क्या जा सकता है, उस तो पहला तुम मत वाले नहीं क्या जा सकता, कि तुम्हारे पास मत ही नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पछाण, कहते अपना मूल पछाण, ऐ हम नुक्ते मैं आप जी के सामने रख रहा हाँ कि गुरु की टीचिंग दे विच की कुछ आंदा है, गुरु की टीचिंग दे विच ए आंदा, एक होर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आंदा है गुरु की टीचिंग दे विच। कोई स्कूल, कोई माँ बाप, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज वो बिल्कुल नहीं सिखाएगा, वो की है गुरु महाराज की टीचिंग दे विच आंदा है कि मरना याद रखो, मरना याद रखो, तेरे मां बाप सिखा दे हैं ये गल ईमानदारी के नाल रखना, मेरे माता पिता ने तो मैंने कदे नहीं जी सिखाया कि मरना याद रखा, मैं तो सच आप जी के सामने दसता, आप जी अपने मुतलक जानते हो, कदे किसी ने नहीं दसिया कि भी मरना याद रखी का होंगे, हाँ घर च कोई मरण की गल करे तो यह जरूर सुनीदा सी कि मोहरे कहते सुख बोलो, सुचा जी की गल करो, मरण की गल ना करो सुख बोलो, सुख की गल करो, चुप वचन बोलो,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲ ਨਾ ਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡਪਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿੱਤ ਕਰ। ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ, ਸਤਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮਰਗ ਮਨ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਵੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਮਰਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਨੂੰ, ਮਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੱਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਮਨ ਮਸਤ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਜੀਵ ਜਿੰਦੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਲਦੇ ਬੁਲਬਲਾ ਉਪਜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੀਤ, ਜਦ ਰਚਨਾ ਕੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਲਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੀ, ਆਮ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਦੁੱਖਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਤੇ ਚਾਮ, ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਖੇ ਗੁਮਾਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਲਹੂ ਨਾੜੀਆਂ ਪਿੰਜਰਾ ਮਿਰਜ ਆਦਿ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਖੁਦਾ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ। ਸਭ ਕੋ ਭਰਿਆ ਫੂਕ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪੈਣ ਵੀ ਨੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਿਸਤਾ ਮਾਸ ਲਹੂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਇਸ ਪਾਂਡੇ ਦਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਲਾਗੇ ਠਨਕਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਠਨਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਤੋੜਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਉਸੇ ਵੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ? ਬਿਲਕੁਲ
सत्य है गुरु की मत, जो असेंशियल चीज़ा गुरु की मत में सिखा लिया जाती हैं वो दुनिया की किसी भी होर मत के दायरे के आदि ही नहीं है। और बहुत कुछ है गुरु महाराज सिखा दिन, सादा रहो सादे रहो। ये कौन सिखाता है कि सादे रहो, साड़ियाँ लाइफ जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़ी लग्जरियस हैं, इसका जो एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव होने करके स्ट्रेसफुल भी हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी का कारण बन रही हैं। और महाराज जी कहते सारे का सारा अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय लिविंग सिंपल जीवन की। हम उसकी मिसाल सुनो, कबीर साहब का श्लोक है सिंपलिसिटी से, कहते कबीर खूब खाना खिचड़ी या मैं अमृत लोन, कहते मेरे लिए खिचड़ी ही जरा है वो बड़ा खूब स्वादला खाना है जिसे सिर्फ लून ही पाया है तो अमृत वर्गा उसका स्वाद है ना, तो बनाने में चिर लगे ना, उसके नाल फैट प्रॉब्लम होवे ना, उसके नाल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होवे तो ना ही उसके नाल ग्रोसरी का बिल वधे। कहते खूब खाना खिचड़ी जाम है अमृत लोन, ना ही वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जेरा रोटी कार नहीं गला कटावे कौन, जेरा रोटी कहते मास वाली रोटी नहीं, चला मुर्दार ले आओ छिलो बनाओ घर का वातावरण जो है वो मैला करो, फिर जिन्होंने अब खावे वो कदे सामू नहीं खाने, कुदरत ऐसा निजम नहीं है, जो कर्म करोगे उसका फल उसे तरह नहीं भुगतना पाएगा। क्योंकि हीरा रोटी कारण है स्वाद के बदले मैं किसी जीव का लिया के गला कट दिना हाँ तो उस कर्म का कोई नतीजा नहीं निकलना, उस कर्म का भी तो नतीजा निकलना है। कहते कौन निकल स्वाद के बदले अपना गला कटवावे, कबीर साहब का श्लोक है हीरा रोटी कारण गला कटावे कौन, कहते मेरी ऐस इन्नी स्वाद की गल बदले मास, हीरा रोटी का मतलब होंगे मास वाली रोटी, कहते मास वाली रोटी के बदले इन्नी गल बदले कौन अपना सियाणा बंदा गला कटाउंदा है, कहते मेरे लिए सादी सिंपल खिचड़ी ही अमृत वर्गी है। इतों भाव है सादा खाओ सादा जीवन जियो, यह है गुरमत की सिक्ख्या गुरमत की टीचिंग। फरीद साहब बाणी च आखते फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, जिहड़ा पहले ही बुरा है जिहड़ा पहले ही बुरा है उसको होर बुरा बनाना है, उसका बुरा करके तुसीं होर बुरा बना दो, बुरा होण दे नाल ओ अपनी आत्मा का नुकसान कर रहा, अपने जीवन का नुकसान कर रहा, अपनी मत का नुकसान कर रहा, अपने जीवन को तबाह कर रहा बुरा होण करके। होर की बुरा उसका करना है, होर उसका बुरा की करना है, अगर होर तुसी उसका बुरा करन लग पे तो फिर उस नाल भी ज्यादा बुरे हो गए। फिरदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, हुण ए बहुत मुश्किल गल है गुस्सा मन ना हंडाए, कौन नहीं चाहता कि मैंने गुस्सा ना आए, पर गुस्सा सानू सबना नहीं आ जाता। यह है गुरमत की तालीम, गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। क्योंकि अगर तू इन सी गल कर लें कि तू देही दे अनेक रोगों तो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोग सिर्फ पैदा ही गुस्से करके होंगे, पैदा ही इमोशनल प्रॉब्लम करके होंगे। तो शास्त्र जी अब आपके सामने मैं दो किस्म की मत अलग अलग करके रखी है, मन भी मत जी सामने इधरों उधरों मिली है अब असं उसमें मत समझी बैठे हैं, अपने आप में अकल वाले आके मत वाले समझी बैठे हैं, कदे सवाल नहीं किया क्वेश्चन नहीं किया शक नहीं की कद सोचा नहीं कि मत कितों ली भी है या वैसे ही कितों आ गई है, नहीं मत सामने आई नहीं असं वे जरूर हो गए हैं, मत सानू आई नहीं असी मत वाले होण दा भरम जरूर करन लग पए हां, मत सिर्फ इको ही ढंग दे नाल आंदी है गुरु की मत तू ले आने सब बिना बाजू दे जाने। जितनी देर तक गुरु तो असी मत नहीं लेंदे फिर वो इंसान अपनी जिंदगी दा हर बोल
हर कर्म हर सोच ओ सोचे ओ करे ओ बोले जो गुरु की मत के नाल बिल्कुल मिलती हो, जो गुरु की मत के विचों हो गए तो वह कह सके आ मैं जो बोल रहा ये मेरे बाबा जी के वचन हैं उन्होंने जो बोल रहा ये मेरे अपने नहीं हैं। मैं मस्कत एक दफा कीर्तन से गया, कीर्तन के बाद एक सज्जन कह लगे भाई साहब मैं आप जी के नाल एग्री नहीं करता, डिस एग्री करता। वैसे भी जितों तक मैं याद है कीर्तन के दौरान मैं एक लफज भी अपने को नहीं किया, जो कुछ अपने लफ्जों किया उसू गुरबाणी दंक्तियों के नाल कोशिश। पहला मेरे ध्यान गुरबाणी की पंक्ति होंगी है फिर मैं कोई गल आखना है, तो सारी तो गुरबाणी ही बोली गई है। तो जो आप जी डिस एग्री करते हो तो बाणी नाल करते हो, मेरे नाल नहीं करते, क्योंकि मेरे पास तो मत है ही नहीं, मेरे पास अपनी कोई सियाणत नहीं है, कोई मत नहीं है, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। जो भी आखता हाँ वो गुरु बाबा जी की पवित्र पावन बाणी के विचों आखदा हाँ, तो वह गुरु बाबा जी की मत है। आओ अपने जीवन अपने मत को त्यागिए, गुरु की मत को लियाइए। गुरु की मत को लियाण के नाल जीवन स्वाद आता है, अपनी मत के नाल जीवन के फिक्कापन आता है। वो मैं पंक्ति कह के समाप्त कर लगा हाँ। कहते हैं लाले गोले मत खरी, जिहड़ा गुरु का लाला गोला दास है सेवक है उसकी मत से है सोने वर्गी खरी, क्योंकि गुरु की मत नीची, नीची का मतलब बहुत अच्छी, क्योंकि उसके पास गुरु की बहुत अच्छी मत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी लाले गोले मत खरी, गुरु की मत नीची साची सुत सुहावनी, उस गुरु के दास की सुरती जी है बहुत सुहावनी है, बहुत टिकी हुई होगी होगी। मनमुख मत सीकी, तो जरा मनमुख है उसकी मत सिक्की होगी, अच्छा जिसे मत सिक्की है उसे सारा ही जीवन सिक्का होगा, जीवन का हर एस्पेक्ट जो है वो सिक्का होगा, देश लस होगा, देश ज्यादा होगा। उनकी किस्मत लक्ष्मी हाले मेरी पूरी जो है वो जब तक की थकावट भी नहीं उतरी, पर अगले कृष्णा के आप जी की सेवा जो है वो होर भी गुरु बाबा जी अपनी आशीर्वाद दें तो उस दे नाल कीती जा सकेगी। समय से रोजाना शाम के दीवान जाना इसे तरह इसे विचार भी जो है लड़ी चलती रहेगी। तो असं इन्ह दसा दिनों के बहुत सारा गुरु बाबा जी की मत का जो खजाना है वह एकत्र करना है। आप वो अपने नोट्स बनाया करो, जाके आप सिर्फ इस दूसरे के नाल इस विचार की सांझ पाया करो, ताकि असी कट्ठे रल के ग्रो हो सकीए। तो आस्ट्रेलिया के दसवें कीर्तन के जो लगे हैं ये साड़ी एक किस्म की इनवैसटमेंट हो गए कि इन्होंने दसा दिनों के असं कुछ प्राप्त किया है। यही कुछ समा प्यार नाल संगति निभाओ।

अस सर नहीं किल बिख हर रंग अस सर नहीं जय जय जग कारण श्रेष्ठ जय जय जग कारण।